ஜாதியை

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई।

0: रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: The Union Minister said that NDA government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayashankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand. National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from Bombay Station under the Indian Broadcasting Company. On 8th of June in 1936, the Indian State Broadcasting

0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी ने आजादवाद आजादी की लड़ाई से लेकर आज के डिजिटल युग तक हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और मनोरंजन के लिए रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। रेडियो केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आपदा के समय में देश का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। और श्रोताओं, इस समय भी आप इसी भरोसेमंद साथी से जुड़े हुए हैं। मैं हूं जया भारती और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह की ताजगी से भरा आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जया, एंड अ वेरी हैप्पी broadcasting day to you and me and all our lovely listeners who are listening in to us at this beautiful Thursday morning. So Jaya, thanks to radio, you and me are chit-chatting and also entertaining our listeners, right?
0: बिल्कुल सुभद्रा, और ये श्रोताओं को शायद ये बात अचंभित कर रही होगी कि आज सवेरे में हम अचानक रेडियो के इतिहास के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं, बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर पूरे देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और न केवल मनोरंजन बल्कि आपदा में भी एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है, क्योंकि जब भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिजली गुल हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं और इंटरनेट बंद हो जाता है, तब केवल रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स ही काम करती है। बैटरी से चलने वाला एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लाखों लोगों की जान बचा सकता है। आपको याद होगा कि वर्ष 1999 में जब उड़ीसा का विनाशकारी महाचक्रवात आया था, तब राज्य का पूरा संचार ढांचा ही तबाह हो गया था। टेलीफोन लाइट कट चुकी थी, बिजली गुल थी और ऐसे समय में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी मशाल बना था। इसी तरह 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय इलाकों और विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई थी। मुख्य भूमि से इन द्वीपों का संपर्क पूरी तरह टूट गया था, तब भी आकाशवाणी ने तुरंत अपनी सेवाओं को आपदा प्रबंधन मोड पर ला दिया। रेडियो के माध्यम से लापता लोगों के नाम प्रसारित किए गए, जिससे बिछड़े परिवारों को मिलाने में मदद मिली। राहत शिविरों की सटीक जानकारी और डॉक्टरों की सलाह को 24 घंटे प्रसारित किया गया। 2013 में केदारनाथ और उत्तराखंड की बाढ़ भी रेडियो लोगों के लिए सहारा बना। और आकाशवाणी देहरादून और स्थानीय कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों ने सेना और एनडीआरएफ के साथ मिलकर रेडियो में फंसे हुए लोगों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, मौसम के पूर्वानुमान और सुरक्षित रास्तों की जानकारी प्रसारित की। इसी तरह साल 2014 में कश्मीर बाढ़ भी आपको याद होगी, जब आपदा में आकाशवाणी कश्मीर की लाइफलाइन बना। सितंबर का महीना था, झेलम नदी उफान पर थी और देखते ही देखते पूरा श्रीनगर शहर पानी में डूब गया था। मोबाइल टावर गिर चुके थे, बिजली गुल थी और इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि आकाशवाणी श्रीनगर का मुख्य

0: रेडियो भी पानी में समा चुका था, लेकिन रेडियो की आवाज नहीं थमी। वाकई जब सब कुछ फेल हो जाता है तब सिर्फ रेडियो काम आता है, और इसके कई उदाहरण हैं। जब आपदा में आकाशवाणी लोगों के लिए सहारा बना।
1: Well, Jaya, you summed it all up. We use radio not just for entertainment, news and the weather, but several important issues are taken care of in a methodical way. Now, we have a report on National Broadcasting Day.
2: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Arzu, Akashvani News, Delhi.
0: और अब समय है देश और दुनिया के सुर्खियों का। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों से न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayashankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart, Winston Peters, and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री ईली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिंडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू की इन तीन देशों की राजकीय यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ जुड़ाव बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: High Commissioner of India to Kenya, Dr. Adar Sweka, handed over the first tranche of 4.5 tons of medical supplies for strengthening Kenya's preparedness for prevention of Ebola public health emergency to Cabinet Secretary for Health, Aidan Duale, in Nairobi yesterday. The medical assistance comprises PPE kits, sample transportation kits, infrared thermometers, face shields, heavy-duty protective boots, and other infection prevention material. India has provided over 45 tons of medical assistance to Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, in recent months for enhancing its Ebola preparedness and response efforts across impacted areas in Africa.
0: और अब जानकारी देते हैं संसद की कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह

0: लिए तैयार हैं। और अब खेल समाचारों के साथ है चिराग झा।
1: सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा कल DDA कर्मजीवी आवास योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस आवास योजना के अंतर्गत नरेला के पॉकेट 11 में स्थित 1200 से अधिक रहने योग्य फ्लैटों पर 25% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती और सुलभ बनाना है। दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि दिल्ली सरकार ने बताया है कि सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 84 सरकारी सेवाओं में आवेदन के निपटारे का समय कम कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को और कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।
2: Getting to Chennai news now, friends. The state government has renamed the school breakfast scheme as Perunthalaivar Kamraj Breakfast Scheme. The scheme was brought in by the earlier government. The TVK government, led by Chief Minister Joseph Vijay, has changed many names. The breakfast scheme will be extended to students up to class 8 on 17th of September, which is Periyar's birth anniversary. We have another news from Chennai. A 25-year-old passenger was arrested for carrying almost 4 kilograms of hydroponic ganja valued at rupees 4 crore from his check-in baggage. He had arrived from Kuala Lumpur, Malaysia to Chennai early Monday morning. The passenger was caught as he had not responded rightly. The 4 packets were tightly wrapped in black polyfill concealed among his clothes. He was arrested, remanded to judicial custody.
0: Aur ab baat karte hain Mumbai Metro ki. महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के लिए बच्चों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए विशेष योग्यता पुरस्कार और छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कक्षा 10 में 90% से अधिक या कक्षा 12 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र छात्रों को 20,000 या 50,000 रुपए के एकमुश्त योग्यता पुरस्कार देने के लिए विचार किया जाएगा। राज्य की योग्यता सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र भी पात्र होंगे। कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों के को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन 15 सितंबर तक संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
2: Bengaluru News Now, Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwaran has directed officials to ensure there is no shortage of drinking water or fodder in drought-affected areas, warning that negligence causing hardship to the public will not be tolerated. Reviewing the drought situation in Chikballapur, he said Karnataka was facing one of its worst droughts in nearly 150 years, with crop sowing falling below 40% due to deficient rainfall. He instructed officials to drill boreholes wherever required, provide electricity connections without delay, expedite the distribution of 35,000 pending title deeds, and take measures to prevent water contamination.
0: अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। कोलकाता में यात्रियों की सुविधा और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कोलकाता मेट्रो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों पर अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार अगले सोमवार यानी कि 27 जुलाई से शनिवार तक प्रायोगिक सेवाएं शुरू होंगी। ब्लू लाइन पर पहली ट्रेन का समय वर्तमान के

0: समय से सुबह 6:50 की जगह सुबह के 6 बजे और ग्रीन लाइन पर सुबह 6:39 की जगह पर 6 बजे से कर दिया जाएगा। दोनों लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 10:30 रवाना होगी, जो ब्लू लाइन पर दोपहर दिन के 9:44 और ग्रीन लाइन पर 10:05 से विस्तारित है। इसके अतिरिक्त सोमवार से शुक्रवार तक ब्लू लाइन पर दैनिक ट्रेन सेवाओं की संख्या 260 से बढ़ाकर 272 और ग्रीन लाइन पर 228 से बढ़ाकर 236 कर दी जाएगी। शनिवार को ब्लू लाइन पर सेवाओं की संख्या 246 से बढ़ाकर 258 और ग्रीन लाइन पर 204 से बढ़ाकर 212 कर दी जाएगी।
1: And Hyderabad News Now, a delegation from the Sports Authority of India inspected key sporting facilities across Mirchal, Malkajgiri, Karimnagar and Hanumkonda district yesterday as part of preparations for the upcoming 8th Khelo India Youth Games 2026 in Telangana. Led by SAI Executive Director Amar Jyoti, alongside Assistant Directors Madhu Harsha, Gopal Kandpal and Mohit, the team conducted thorough assessments at several prominent locations. To ensure international standards for the national event, the delegation instructed local authorities to immediately undertake necessary repairs and upgrade existing infrastructure where required. And Jaya, we have one important announcement for our listeners. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpat, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
0: और अब समय है ये जानने का कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि आज का न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky, possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 and maximum 37 degrees Celsius. Bengaluru will experience generally cloudy sky with light rain. Minimum temperatures expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 28 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 23 to 32 degrees.
0: और अब आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज के दिन कौन सी तारीखें दर्ज है।
1: 1904, this day, the Great Indian Peninsula Railway started first-class restaurant cars on its mail trains. 1920, this day, British East Africa is renamed Kenya and becomes a British Crown Colony.
0: आज के दिन 1981 में भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह यानी कि एप्पल ने आज के दिन अंतरिक्ष में आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया था।
1: And 1993, Indian National Satellite INSAT-2B, second satellite in the INSAT-2 series, was launched. And 2014, the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland begin. And in 2015, NASA announces the discovery of the planet Kepler-452b by the Kepler probe. It is believed to be the most Earth-like planet to have been discovered.
0: और इसके कुछ दिनों बाद यानी कि 2019 में भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था।
1: एंड अगेन 2020 समर ओलंपिक्स बिगिन एट टोक्यो।
0: और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो आज की तारीख सिहाई से नहीं बल्कि देश के महानतम सपूत के लहू से लिखा गया है। आज देश के सबसे निडर, निर्भीक और अदम्य साहसी क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। वही आजाद जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी और जो जीते जी कभी फिरंगियों के हाथ नहीं आए।

0: महात्मा के इस वीर सपूत का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। श्रोताओं, आजाद जी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खौफ थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जीते जी कभी भी फिरंगियों की पुलिस उन्हें छू भी नहीं पाएगी, और उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो दुश्मनों से घिर गए, तो उन्होंने अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स का सामना किया, और जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की जगह खुद को गोली मार ली और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। उनकी वो लाइन आज भी हवाओं में गूंजती है कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनका दम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान आज भी देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देता है।
1: And friends, we are going to another freedom fighter. Tributes to a freedom fighter, a dedicated medical doctor.

0: आजाद ही रहेंगे। उनका अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान आज भी देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देता है।
1: And friends, we are going to another freedom fighter. Tributes to a freedom fighter, a dedicated medical doctor. Lakshmi Sehgal was the captain of the world's first women's modern military regiment, born Lakshmi Swaminathan in Madras, now it's called Chennai, to a progressive, politically active family. She earned her MBBS degree from Madras Medical College in 1938. After a brief period practicing medicine, she moved to Singapore in 1940, where she treated impoverished Indian laborers and provided medical aid to prisoners of war. This was the time she met Subhash Chandra Bose and joined forces with his Indian Independence League and the Indian National Army, INA, and was appointed by Bose as the commander of the newly formed Rani of Jhansi Regiment, becoming universally known as Captain Lakshmi, and toiled hard for the betterment of the country. She earned a Padma Vibhushan in the year 1998, and in the year 2012, she left this world on this day at the age of 97.
0: और आज ही के दिन जहां हम एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद कर रहे हैं और भी फ्रीडम फाइटर को याद कर रहे हैं, तो आज ही के दिन साल 1856 में भारत माँ के एक और महान सपूत का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश के कोने कोने में स्वराज की अलख जगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। श्रोताओं, तिलक जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी समाज सुधारक, वकील और पत्रकार भी थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए मराठा और केसरी जैसे अखबारों की शुरुआत की। उनके तीखे लेखों से ब्रिटिश सरकार इस कदर डर गई थी कि उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन जेल की चार दीवारें भी उनके हौसलों को

अपना सुकून नजर आया। सिस्टर निर्मला की इसी निस्वार्थ और मूक सेवा के लिए भारत सरकार ने साल 2009 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत

आज का दिन एक ऐसे महान आत्मा को भी नमन करने का है जिसने अपना पूरा जीवन मानवता, शांति और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज सिस्टर मैरी निर्मला जोशी की जयंती है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के निधन के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की कमान संभालने के लिए चुना गया था। सिस्टर निर्मला जोशी का जन्म आज ही के दिन साल 1934 में झारखंड की राजधानी रांची के एक नेपाली हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम कुसुम था। पढ़ाई लिखाई में बेहद होनहार कुसुम ने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ली और कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन कानून की अदालतों से ज्यादा उन्हें समाज के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करने में

0: आज आधुनिक भारतीय चित्रकला के उस्ताद सैयद हैदर रजा यानी SH रजा साहब की पुण्यतिथि है। रजा साहब एक ऐसे जादुई चित्रकार थे जिन्होंने कैनवास पर सिर्फ रंगों को नहीं बिखेरा बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्म और ब्रह्मांड के रहस्यों को उकेरा है। भारत सरकार ने कला जगत में उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। फ्रांस सरकार ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से नवाजा था।
1: एंड फ्रेंड्स, बर्थडे ऑफ अ म्यूजिक कंपोजर प्रोडिजी, द गॉड ऑफ इंडियन वायलिन, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, हु एक्सेल्ड इन इंडियन ट्रेडिशनल कर्नाटक म्यूजिक बट ऑल्सो अ पायनियर ऑफ फ्यूजन इन इंडिया। He studied to become a physician, but then his love for music overpowered the medical profession, so he became a global icon. From the California Institute of Arts, he earned a master's degree in Western classical music. This overseas study expanded his mastery of both Indian Carnatic and Western classical traditions. In the year 1973, and from there on, he made several historical collaborations and creations of albums with a number of international musicians. Dr. Subramanian is the only musician who has performed, recorded Carnatic classical music, Western classical music, both orchestral and non-orchestral, and also composed for and conducted major orchestras.
0: आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे फनकार को भी याद करने का है जिन्होंने रोते हुए लोगों को हंसना सिखाया। आज ओरिजिनल भाईजान और किंग ऑफ कॉमेडी महमूद अली साहब की पुण्यतिथि है। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। सुनते हैं पड़ोसन का ये सदाबहार गीत।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो आज सवेरे के आज के अंक में बस इतना ही।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
6: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
4: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक

0: फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में

0: प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
3: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार

0: मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை அக்ஷய் பத்மநாபன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். ஆர் சுவாதிஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், மடிப்பாக்கம் பி சுரேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம், என் சுந்தர் அவர்கள் மோர்சிங். அடுத்த நிகழ்ச்சி பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் சில நொடிகளில்.
1: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगों के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
3: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा

0: माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। यह घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री एलिए बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोनास योनोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today reiterated that nothing is more important than the welfare and youth and future of youth of the country. In a social media post, Mr. Modi announced that the government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. He added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern, not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues.

0: उन्हें बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ जुड़ाव बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तर मैसिडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: भारत ने सीमा पार आतंकवाद को शासन की नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है और दोहराया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग बना रहेगा। ये टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के संचालन पर कल हुई उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उच्च स्तरीय बहस का दुरुपयोग करके झूठी बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है और हमेशा रहेगा, तथा पाकिस्तान इस संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है, ताकि उनकी मांगों को लागू करने का दबाव बनाया जा सके और आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया कि चक्का जाम का आह्वान बहुत बड़ी घटना है।
3: सीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने कल नैरोबी में स्वास्थ्य मंत्री एडन डवेल को इबोला की रोकथाम के लिए 4.5 टन चिकित्सा सामग्री की पहली खेप सौंपी। इस चिकित्सा सहायता में पीपीई किट, जांच किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, मजबूत सुरक्षात्मक जूते और अन्य संक्रमण निवारक सामग्री शामिल हैं। भारत ने हाल के महीनों में अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्रों में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को इबोला संक्रमण से निपटने के लिए 45 टन से अधिक चिकित्सा सहायता प्रदान की है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है, जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी जहाज पर हमला करेगा तो उसके जवाब में अमेरिका ईरान के पुल या बिजली संयंत्र को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश जवाबी कार्रवाई की नीति अपनाएगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे खाड़ी देश सऊदी अरब

0: और नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की अनुमति मिल जाएगी। अब इस समझौते को समीक्षा के लिए अमरीकी संसद में भेजा जाएगा। हालांकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वर्तमान में संसद के ऊपरी और निचले सदनों पर नियंत्रण रखती है, फिर भी दोनों पक्षों के कुछ सांसद इस समझौते का विरोध कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: समझौते का लिखित प्रारूप सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने बताया कि इससे सऊदी अरब को भविष्य में यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति मिल सकती है, जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों के ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने में भी किया जा सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बताया कि सहयोग समझौते के साथ साथ एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा कि यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग का विस्तार है। यह समझौता सऊदी नेता के पिछले नवंबर में वॉशिंगटन यात्रा के बाद हुआ है। यह घोषणा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच आई है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी रहा है और कई अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करता है जिन पर ईरानी हमले हुए हैं। इससे दो दिन पहले ही यमन में ईरान के सहयोगी संगठन हौथी ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मूसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण कई घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलमग्न हो गए हैं। पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने बताया है कि कल खोज अभियान के दौरान कुछ निवासी लापता थे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सरबजीत कौर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu to embark on a 2-day visit to Romania beginning today. New Delhi slams Islamabad at United Nations over cross-border terrorism and reiterates Kashmir as integral and inalienable part of India. Massive protests to be held in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir today against atrocities by Pakistani authorities. India sends 4.5 tons of medical supplies to Kenya for tackling public health emergency. US launches 12th consecutive night of strikes against Iran as both sides continue to target civilian infrastructure. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicu Dan, Interim Prime Minister L.A. Bolvean, President of the Senate Mirchi Abrudin, and President of the Chamber of Deputies Soren Grignion. She is also scheduled to meet the members of the Romanian

0: பாடல்களோடு உலா வந்தது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் சுகமான ராகங்கள் நாளை காலை 10:30 ஒலிபரப்பாகும். தொடர்வது ஹிந்தி, அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगें करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम

5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रावधान करता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के

0: रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोरदोना सियोनोस्का दावकोवा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिला राष्ट्रपति का होना गर्व की बात है। स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 बुरी तरह प्रभावित है। बनिहाल और उधमपुर सेक्टरों के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारण लगातार दूसरे दिन वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम में सुधार और सड़क मरम्मत पूरी होने तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करें। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today reiterated that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. In a social media post, Mr. Modi announced that the government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. He added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern, not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter.
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: President Draupadi Murmu will reach Bucharest in Romania today on the final leg of her three-nation visit. After her arrival at the Cotroceni Palace, President Murmu will be accorded a guard of honour. She will hold delegation-level talks with her Romanian counterpart, Nicușor Dan. Several MOUs will be signed after the talks. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in the honour of President Murmu today. India slammed Pakistan for deploying cross-border terrorism as a tool of state policy and reiterated that Kashmir will always remain an integral and inalienable part of India. The remarks were made by India's permanent representative to the United States, Ambassador P. Harish, at the high-level open debate of the UN Security Council on Natural Resources Governance yesterday.

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டீர்கள். மீண்டும் மெல்லிசை பாடல்களை நாளை மதியம் 12:50 கேட்கலாம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
2: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो, उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
1: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है।

0: until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening. 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, यह ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा

0: फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आत्

0: आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
2: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकोर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई।

0: आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी चेन्नई, नेरम 2:30।

0: அழகது. இதுவரை திரைகானம் கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा, प्रश्न पत्र लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू की, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इन्हीं मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप साइकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा

0: प्रतिकूल है, सदन ऐसे बाधित करेंगे, यह ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। हालांकि डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परव थानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया। फिलीपींस के मनीला में 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत यूएई संयुक्त वाणिज्य दूतावास समिति जेसीसीए की 7वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रवासी भारतीय मामलों के काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और यूएई के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव ओबैद मोहम्मद अलहसान अल शमसी ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने समुदाय के कल्याण पर बल दिया और कौंसुलर, वीजा और कानूनी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए आगामी रणनीति पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें यह दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि ये सारे दावे झूठे हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House, J.P. Nadda, criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the Opposition, Mallikarjun Kharge, demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: experience, eligibility conditions and the prescribed application format is available on the official CCRS website. Kindly look up www.ccrs.ayush.gov.in. The Directorate of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration has invited applications from eligible officers of the central government, state governments, union territories, agricultural universities and recognized research institutes for one post of Joint Director, Fisheries. The post is a Group A gazetted non-ministerial position in pay level 11 as per the 7th CPC and will be filled on deputation, including short-term contract basis. Interested and eligible candidates may download the detailed vacancy notice, eligibility conditions and application format from the official Andaman and Nicobar Administration website and apply within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up www.andaman.gov.in. The Railway Recruitment Cell, RRC, Central Railway has invited online applications from eligible Scouts and Guides candidates for recruitment against the Scouts and Guides quota for the year 2026-27. The recruitment includes 2 Level 2 Group C posts and 10 Level 1 erstwhile Group D posts distributed across various divisions of Central Railway. Online registrations will close on 12th August 2026 at 6 p.m. Detailed eligibility criteria and application guidelines are available on the official website. Do look up www.rrccr.com. The Inland Waterways Authority of India, IWAI, under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, has invited applications from eligible officers working in central government, state governments, public sector undertakings, statutory bodies and autonomous bodies for one post of Principal Private Secretary on deputation basis. The appointment will initially be for a period of 3 years at the authority's headquarters in Noida. Applications in the prescribed format, along with self-attested copies of certificates, APARs for the last 5 years and other required documents must be submitted through proper channel within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, the application format and other recruitment details available on the official IWAI website. Kindly look up www.iwai.nic.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, अनुभव, आयु सीमा आदि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट www.nha.gov.in पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का संवैधानिक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। उपनिदेशक कार्यक्रम, सहायक निदेशक कार्यक्रम, लेखाधिकारी, निजी सहायक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट। पात्रता संबंधी मानदंड इस वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं cara.wcd.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रोफेसर कुल 20 रिक्तियां, अतिरिक्त प्रोफेसर कुल 5 रिक्तियां, एसोसिएट प्रोफेसर कुल 9 रिक्तियां और सहायक प्रोफेसर कुल 17 रिक्तियां। भर्ती अधिसूचना, शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव, आवेदन शुल्क और आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट एम्स

0: bbnagar.edu.in. इसके अतिरिक्त 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा और सहायक कैमो संविदा के पदों के लिए शुद्धि पत्र जारी करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में दिल्ली संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन सही है तथा क्रम संख्या 2 और 4 को इस प्रकार पढ़ा जाए, कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा और सहायक कैमो संविदा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रभाग अनुबंध के आधार पर युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट अथवा 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। विभाग की वेबसाइट है www.moef.nic.in। टाटा मेमोरियल केंद्र, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधिकारी एफ, रेडियो डायग्नोसिस, चिकित्सा अधिकारी ई, चिकित्सा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, न्यूक्लियर मेडिसिन, चिकित्सा अधिकारी डी, जनरल मेडिसिन, मेडिकल फिजिसिस्ट डी, वैज्ञानिक अधिकारी डी, गुणवत्ता, वैज्ञानिक अधिकारी डी, फिजियोथेरेपी अधिकारी प्रभारी डिस्पेंसरी, वैज्ञानिक सहायक सी, न्यूक्लियर मेडिसिन, वैज्ञानिक सहायक बी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर, वैज्ञानिकी सहायक बी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। आवेदन के लिए अंतिम तिथि रहेगी 1 अगस्त 2026। अधिक विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स को क्लिक करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सम विश्वविद्यालय है, जिसका मुख्य परिसर नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय परिसर आइजोल, अमरावती, ढेंकनाल, जम्मू और कोट्टायम में है। अपने मुख्य परिसर नई दिल्ली के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक कुल सचिव के 2 पदों को भरने हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए IIMC की वेबसाइट www.iimc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अगले आधे घंटे तक हम इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी कार्यक्रम में हम डालेंगे एक नज़र। और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज है पुण्यतिथि या आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार।
2: नमस्कार विशाल, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू टुडेज परिक्रमा। विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस टू यू ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। And since we are connected to radio, we are the anchors, the presenters, radio becomes an important medium of broadcasting and we really feel very connected with radio, isn't it?
1: जी, देश की आवाज़

0: जी हाँ, द डे हाईलाइट्स रेडियोज वाइटल रोल इन रीचिंग रिमोट विलेजेस एंड डाइवर्स लिंग्विस्टिक पॉपुलेशंस अक्रॉस इंडिया. वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस इन आवर डेटलाइन सेक्शन टुडे, बट फर्स्ट द हेडलाइंस. विशाल
1: जी, जरूर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी. उन्होंने आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता.
0: गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस एनी इश्यू इंक्लूडिंग नीट इन पार्लियामेंट, सेज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू.
1: आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान.
0: इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान्स रिमार्क्स ऑन द इंडस वाटर्स ट्रीटी एट यूएनएससी, सेज ट्रीटी टू स्टे इन अबेयंस अंटिल क्रॉस बॉर्डर टेरर एंड्स.
1: और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे. प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.
0: And Vishal, as always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about National Broadcasting Day. Today is a truly special occasion. We celebrate National Broadcasting Day, observed every year on the 23rd of July, marking the beginning of organized radio broadcasting in India in the year 1927.
1: जी अनुजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा. आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है देश में रेडियो प्रसारण की दृष्टि से. आज का दिन सिर्फ भारत में रेडियो की शुरुआत को याद करने का ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे माध्यम का जश्न मनाने का भी है जिसने कई पीढ़ियों को जानकारी दी, शिक्षित किया, मनोरंजन किया और प्रेरित भी किया. और इस शानदार सफर के केंद्र में है आकाशवाणी, भारत का भरोसेमंद लोक प्रसारक. क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रॉडकास्टिंग की कहानी लगभग एक सदी पहले शुरू हुई थी?
0: That's right, Vishal. The first organized radio broadcast was made on the 23rd of July 1927 from Bombay by the Indian Broadcasting Company. It was a modest beginning, but one that would transform communication in our country forever.
1: बाद में ये सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बनी और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो में बदल गई.
0: And in 1956, it was given the beautiful name we all cherish today, Akashvani. बहुत ही अच्छा लगता है बोलने में जब हम समाचार शुरू करते हैं विशाल, एंड वी से दैट दिस इज आकाशवाणी. इट लिटरली मींस वॉइस फ्रॉम द स्काई, अ नेम दैट परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स इट्स मिशन ऑफ रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन.
1: जब हम रेडियो शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें गाने और समाचार याद आते हैं, लेकिन आकाशवाणी की भूमिका हमेशा से ही इससे भी कहीं ज्यादा रही है.
0: एब्सोल्युटली, सिंस इंडिपेंडेंस आकाशवाणी हैज सर्वड एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, कैरिंग इंफॉर्मेशन टू विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड इवन रिमोट रीजंस वेयर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वर वंस अनअवेलेबल.
1: चाहे किसानों को खेती के बेहतर तरीकों के बारे में जानकारी देना हो, परिवारों को स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में शिक्षित करना रहा हो, साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना हो, या फिर भारत की समृद्ध संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना हो, आकाशवाणी हमेशा एक साथी की तरह साथ रही है.
0: One of the greatest strengths of Akashvani has been its role in nation building.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. राष्ट्रीय महत्व के समय चाहे चुनाव हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, जन स्वास्थ्य अभियान हो या फिर नीतिगत घोषणाएं, लोग हमेशा विश्वसनीय और सही जानकारी के लिए आकाशवाणी का ही रुख करते रहे हैं.
0: Absolutely right. It has also encouraged scientific thinking, promoted education, empowered women, supported youth, and provided valuable information to farmers through dedicated agricultural programs as well.
1: और आपातकालीन स्थितियों में आकाशवाणी की भूमिका को भी कभी भूला नहीं जा सकता, जब रेडियो अक्सर संचार का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद जरिया बन जाता है.
0: And here is an interesting fact for our listeners. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching nearly 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects.
1: अनुजा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, अद्भुत है बिल्कुल, कि बहुत कम संस्थान हैं जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को इस तरह से दर्शाते हैं जैसा आकाशवाणी दर्शाती है.
0: Yes, and now let's talk about something every listener loves, that is music.
1: जी, 1957 में आकाशवाणी ने मशहूर विविध भारती सेवा शुरू

0: यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इंडस रिवर डॉल्फिन पंजाब का राज्य जलीय जीव यानी स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। वन्य जीव विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित मीटिंग में कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने बताया कि जिले के अंतर्गत आने वाला ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व में वर्तमान में 3 डॉल्फिन की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के किनारे बोटिंग तथा अन्य इको टूरिज्म गतिविधियों के माध्यम से डॉल्फिन टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिए भी एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनने की अपार संभावनाएं रखता है। डॉल्फिन टूरिज्म को टिकाऊ तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से शुरू करने की संभावनाओं पर WWF इंडिया के कोऑर्डिनेटर गीतांजलि कंवर एवं वन्य जीव रेंज अधिकारी जसवंत सिंह व अन्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। श्री बंसल ने अधिकारियों को ब्यास नदी के किनारे ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के निर्देश भी दिए जहां से पर्यटक डॉल्फिनों के प्राकृतिक आवास को बिना किसी नुकसान पहुंचाए सुरक्षित एवं सुविधाजनक तरीके से देख सकें। अधिकारियों ने मीटिंग में बताया कि रिजर्व क्षेत्र में डॉल्फिन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ब्यास नदी में 17 डॉल्फिन मित्र तैनात किए गए हैं। इन स्वयं सेवकों को विभाग द्वारा संरक्षण संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला प्रशासन डॉल्फिन मित्रों के लिए उपयुक्त रोजगार एवं आजीविका के अवसर भी सुनिश्चित करेगा ताकि वे संरक्षण कार्यों में प्रभावी ढंग से अपना योगदान देते रहे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट कपूरथला को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में सहायक होगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: एंड लेट्स नाउ गो टू केरलम। We all know that Onam is Kerala's biggest festival, but the month that comes just before it is Kari Kedakam, which is special in its own way. And from the traditional reading of the Ramayana to the practice of visiting the Nalambalam temples, the month is marked by several unique customs and traditions. And Kari Kedakam is the final month of the Malayalam calendar. One of the most distinctive traditions associated with the month is the practice of visiting 4 temples on the same day. Let us hear more about this unique tradition from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: Nalambala Darshan means visiting 4 temples dedicated to the 4 sons of King Dasharatha, Lord Rama, Bharata, Lakshmana and Shatrughna on the same day. Devotees believe that visiting these 4 temples during the Malayalam month of Karkidagam, which is also known as Ramayana month, brings great spiritual benefits and that is equivalent to receiving the benefits of reading the entire Ramayana. Keralam is believed to have around 6 groups of Nalambalam temples. The most famous group is located in Thrissur and Ernakulam districts. The Nalambalam temples in Kottayam district is also well known. A special feature in Kottayam district is that all 4 temples are located so closely, making it possible for devotees to visit the 4 temples in a single day. The tradition was once mainly followed in certain local areas, but over the years, Nalambala Darshan has become increasingly popular among devotees from different parts of Kerala. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने अंडमान कोकम की खोज की है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंडमान कोकम के विशिष्ट जर्म प्लाज्म का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कराया है। ये उपलब्धि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: अंडमान की स्थानीय अनुवंशिक धरोहर के संरक्षण में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। अंडमान कोकम के विशिष्ट जर्म प्लाज्म का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण किया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हासिल की गई है। अंडमान कोकम, जिसका वानस्पतिक नाम गार्सिनिया ट्राइविनिस है, एक सूक्ष्म स्थानिक अर्थात माइक्रो एंडेमिक प्रजाति है। यह पौधा केवल दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाता है। वर्ष 1993 में इस प्रजाति की खोज के समय इन द्वीपों में इसका केवल एक ही पौधा अस्तित्व में होने की जानकारी सामने आई थी। इस दुर्लभ पौधे के संरक्षण और संवर्धन के लिए ICEAR कैरी के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंडमान कोकम के विशिष्ट जर्म प्लाज्म का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कराया है। यह उपलब्धि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय अनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे इस दुर्लभ प्रजाति

0: टिकी पहचान, संरक्षण और भविष्य में वैज्ञानिक उपयोग की संभावनाएं और मजबूत होंगी। अंडमान कोकम जैसे दुर्लभ स्थानीय प्रजातियां न केवल द्वीप समूह की प्राकृतिक धरोहर है बल्कि जैव विविधता और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: एंड नाउ ओवर टू अगरतला, where a timeless blend of royal heritage, spiritual faith and social harmony has transformed old Agartala's Khairpur into a vibrant cultural hub. The grand 7-day Kharchi Puja and Mela began at the historic 14 Gods temple premises with a deep devotion and fanfare. Here is a special feature on this magnificent celebration.
2: The sacred rituals of Kharchi Puja officially commenced on the evening of July 21st at the Devghat of the Howrah River near the 14 Gods temple. Under the guidance of the head royal priest, the Chantai, the 14 metal idol deities underwent their traditional holy bath. The following day, Chief Minister Dr. Manik Shaha formally inaugurated the festival and fair at the historic Kanchanmala Manch by lighting the ceremonial lamp. Following the inauguration, the historic Haveli complex transformed into a glowing epicenter of cultural unity and royal heritage. Beyond the traditional worship of the 14 deities representing the forces of nature, this year's festival features a vital environmental mission embracing the nationwide campaign Ek Ped Maa Ke Naam. The chairman of the Mela committee highlighted the green initiative.
3: So, हमारा इस बार का थीम है एक पेड़ माँ की नाम। 1000 करके डेली हम फ्री ऑफ कॉस्ट आदमी लोग को देगा, क्योंकि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस अगर ठीक नहीं रहेगा तो सामने वाले दिन में हमारा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा।
2: With tens of thousands of pilgrims flocking to Khairpur every day, the local administration has pulled out all the stops, robust security, organized traffic control, uninterrupted drinking water and round-the-clock healthcare services have been put in place to ensure a smooth experience for visitors. For 7 straight days, this confluence transcends religious boundaries, bringing people together through shopping, cultural exchanges and a shared appreciation of Tripura's rich history. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
1: Vishal, we all know that our president is on a state visit to North Macedonia and other countries. And as part of her historic state visit to North Macedonia, President Draupadi Murmu paid tribute to one of the country's most revered national heroes, Goce Delchev. The president laid a wreath at the grave of Goce Delchev at the Church of St. Spas in the capital Skopje. Delchev was remembered as a leading revolutionary who fought for the freedom and self-determination of the people of Macedonia during the late 19th and early 20th centuries. We have more on this from our correspondent who is covering the visit.
4: Born in 1872, Goce Delchev was a key leader of the Internal Macedonian Revolutionary Organization, which was to end Ottoman rule in the region. He believed in the ideals of the freedom, equality, cooperation among different communities. Although he was killed in 1903 at the age of 31, his legacy continued to inspire generations, and he remained a symbol of Macedonian national movement. The wreath-laying ceremony by President Murmu reflected India's respect for North Macedonia's history and its national heroes. It also underscored the growing friendship between the two countries during the first ever state visit by an Indian president to North Macedonia. This is Subhashree Mahapatra from North Macedonia for Akashvani News.
5: और अब एक खबर झारखंड से, झारखंड के युवाओं के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जो फिल्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत रांची में झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के माध्यम से फिल्म एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, कौशल विकास और फिल्म उद्योग में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्मकारों को भी सम्मानित किया गया। और अब चलते हैं खेल के मैदान में, जहां क्या कुछ हो रहा है जानने की कोशिश करते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी।

0: एक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं।
1: And coming to the business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today, extending their losing streak for the fourth consecutive session. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870.
0: और कार्यक्रम के हम उस हिस्से में आप पहुंचे हैं जब हम बात करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था या फिर आज जिनकी जयंती है। और सबसे पहला नाम हमारे सामने है बाल गंगाधर तिलक का।
1: यस विशाल, ही वाज अ पायनियरिंग फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर एंड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, द आर्किटेक्ट ऑफ आवर अवेकनिंग। थ्रू हिज फियरलेस जर्नलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, he united millions, transformed India's independence movement and inspired generations to fight for liberty. And if we talk about the historical legacy and contributions,
0: ji bal gangadhar tilak ne angrezi shasan british shasan ki krurta aur भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की अपने लेखों के माध्यम से, और केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी, और होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और जिसकी वजह से उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी मिली। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में स्वराज स्थापित करना। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। उन्होंने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाए जाने की भी शुरुआत की।
1: He was the one who transformed community event like गणेश उत्सव and Shivaji Jayanti into massive platforms for public unity and anti-British sentiment. And moving on, we also pay tribute to Chandrasekhar Azad on his birth anniversary today. The nation pays rich tribute to this revolutionary freedom fighter, honoring his indomitable courage, fierce patriotism and supreme sacrifice in India's independence movement. He was born in 1906 and famously declared his name as Azad when arrested as a teenager, vowing never to be captured alive by the British.
0: Nidar, nirbhik aur adamya sahasi krantikari Pandit Chandrasekhar Azad जीते जी कभी भी फिरंगियों के हाथ नहीं आए। और आज़ाद जी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खौफ थे, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि जीते जी कभी भी फिरंगियों की पुलिस उन्हें छू तक नहीं पाएगी, और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो पुलिस से घिर गए तो उन्होंने अकेले ही सामना किया, और आखिरी गोली जब उनकी पिस्तौल में बची तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मार ली और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए।
1: Today, leaders and citizens across India are honoring this great hero of our freedom struggle, commemorating his immense contributions, keeping the flame of his sacrifice alive for future generations. And the next personality we pay tribute to is Captain Lakshmi Sehgal. It is her death anniversary today. We pay humble tributes to her. She was the commander of the Indian National Army's Rani of Jhansi Regiment and a tireless social reformer. She was known for her profound medical service and defense of marginalized communities. Her legacy continues to inspire generations of activists.
0: Ji, Netaji Subhash Chandra Bose ke saath Captain Lakshmi Sehgal ne kandhe se kandha milakar कई सराहनीय काम किए। उनको बेहद मुश्किल जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं, और उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि फौज में महिलाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरणा देना और उनको भर्ती करना, और लक्ष्मी सहगल ने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम पहुंचाया। और जिस ज़माने में स्त्रियों का घर से निकलना भी एक बहुत ही अलग बात समझी जाती थी, उस समय में उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की जो एशिया में अपनी तरह की पहली विंग थी।
1: जी विशाल, शी प्रोवाइडेड मेडिकल रिलीफ एंड फॉट फॉर विक्टिम्स फॉलोइंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड द 1984 एंटी सिख राइट्स एज वेल, एंड इन 1998 शी वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, एंड इन 2002 शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू कॉन्टेस्ट द इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।

0: और आज के दिन जन्म हुआ था ताराशंकर बंदोपाध्याय का, बांग्ला भाषा के जाने माने साहित्यकार। ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म 23 जुलाई 1898 को बंगाल के बीरभूम के लाखपुर में हुआ था। ताराशंकर अपने समय के बांग्ला उपन्यासकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे। उनके उपन्यास आरोग्य निकेतन और गणदेवता को पुरस्कृत किया जा चुका है। आरोग्य निकेतन पर 1956 में साहित्य अकादमी की ओर से और गणदेवता पर 1967 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे प्रादेशिक जीवन को बहुत ही व्यापक रूप से चित्रित करते रहे और इस काम में उन्हें महारत हासिल थी और इसीलिए वो लोकप्रिय भी थे।
1: And we, moving on, we pay tribute to widely revered as the Keats of Punjab, Shiv Kumar Batalvi, known as the Birha Da Sultan, that is, King of Separation. His poignant verses about love, loss, and longing

0: And last but not the least, it is Mehmood Ali. It is his death anniversary today. The legendary Indian actor and the comedy king of Indian cinema, who starred in over 300 films. His unique style, memorable music scenes and unmatched comic timing shaped generations of Hindi cinema. There is one movie which we cannot... anyone can watch innumerable times, and that was Padosan, in which he had a very memorable role. But right now we have a dialogue from another movie of his.
1: तुम मुझसे बचना चाहता था?
2: नहीं नहीं अमर, तुम्हें देखते ही गले से लग कर मिलना चाहता था, लेकिन तुम किसी बड़े आदमी के साथ बैठे थे, वो क्या सोचता? अमर का दोस्त एक वेटर, एक मामूली होटल बॉय,
1: बड़ा आदमी वो होगा दोस्त के दिल को नहीं पहचानता यार।
2: पहचान लिया, मुझे माफ कर दे अमर यार।
3: जी, अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिकाओं में रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति बहुत समर्पित थे और अपने बहुमुखी अभिनय प्रतिभा और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियां दी और फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार उनको दिए गए। और अब समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम परिक्रमा का, हमें यहीं दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।
4: नेरम 5 मणि, आकाशवाणी चेन्नई 100.1 மெகாஹெட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசை அரங்கிசை. கே வி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். ஜி பத்ரிநாத் அவர்கள் வயலின், மணக்கல் ஆர் ஸ்ரீராம் அவர்கள் மிருதங்கம். ஏக தந்தம் ஸ்லோகத்தை தொடர்ந்து விநாயகா எனத் தொடங்கும் ஹம்சத்வனி ராகம் ஆதி தாளம் வீணையர் வீணை குப்பையர் பாடல்.
5: ஏகதந்தம் அகாகாயம்

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री साइकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के

0: कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05. ஆகாஷ்வாணி 100.1 மெகா ஹெட்ஸ் எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசை.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, 23 जुलाई का दिन भारतीय प्रसारण इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन वर्ष 1927 में भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक छोटे से रेडियो प्रसारण की शुरुआत आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्कों में से एक का रूप ले लेगी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में लोक सेवा प्रसारण की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ इसकी भूमिका किस तरह विकसित हुई, डिजिटल युग में ये किस प्रकार नए माध्यमों को अपना रहा है और लोकतंत्र तथा समाज के लिए इसकी उपयोगिता आज भी क्यों बनी हुई है। भारत में प्रसारण का इतिहास वास्तव में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना से भी पहले शुरू हो चुका था। देश का पहला रेडियो प्रसारण जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया था। इसके चार साल बाद 23 जुलाई 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन का उद्घाटन किया। यही दिन भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत के रूप में जाना जाता है और इसी कारण 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के पहले प्रसारण से लेकर 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना तक ये घटनाएं भारत में सार्वजनिक प्रसारण की नींव रखने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव थे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में रेडियो ने जिस तरह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाया, उसने इसे केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी बना दिया। भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की लगभग एक शताब्दी लंबी इस यात्रा पर डालते हैं एक नजर।
2: भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे यानी आज के मुंबई से नियमित रेडियो सेवा शुरू की। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अधिक समय तक नहीं चल सकी और 1930 में इसका संचालन बंद हो गया। इसके बाद सरकार ने प्रसारण सेवाओं की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की। यहीं से प्रसारण को एक व्यावसायिक गतिविधि के बजाय जनसेवा के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वर्ष 1935 में ब्रिटिश प्रसारण विशेषज्ञ लाइनर फील्डन

0: को भारत का पहला कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में प्रसारण सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में कई प्रयास हुए। इसके बाद 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इसी दौर में रेडियो पर समाचार प्रसारण की भी शुरुआत हुई। 19 जनवरी 1936 को पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया और 1937 में सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर देश की समाचार व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरे देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। उस समय रेडियो की पहुंच देश के केवल 2.5% भौगोलिक क्षेत्र और लगभग 11% जनसंख्या तक थी, लेकिन स्वतंत्र भारत ने रेडियो को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना और इसके विस्तार को प्राथमिकता दी। 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम को औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसके अगले ही वर्ष 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई, जिसने फिल्म संगीत, हल्के फुल्के मनोरंजन और लोकप्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों श्रोताओं के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाई। इसी दौर में प्रसारण का दायरा लगातार बढ़ता गया। 1959 में टेलीविजन सेवा की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के ही एक भाग के रूप में हुई। बाद में 1976 में दूरदर्शन को अलग संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 23 जुलाई 1977 को मद्रास यानी आज के चेन्नई से भारत की पहली FM सेवा शुरू हुई, जिसने रेडियो प्रसारण की गुणवत्ता और लोकप्रियता दोनों को नई ऊंचाई दी। तकनीक के विकास के साथ सार्वजनिक प्रसारण भी लगातार आधुनिक होता गया। 1988 में नेशनल चैनल शुरू किया गया, जिसने देश भर के श्रोताओं तक राष्ट्रीय कार्यक्रम पहुंचाए। और फिर 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती अस्तित्व में आया, जिसके तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारण संस्था के रूप में नया स्वरूप मिला।
1: लोक प्रसारण का अर्थ केवल समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक हर परिस्थिति में विश्वसनीय संवाद पहुंचाना है। इस भावना को समझने के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना याद आती है। वर्ष 1947, देश आजाद हो चुका था, लेकिन विभाजन का दर्द अभी भी ताजा था। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विस्थापित लोग राहत शिविरों में रह रहे थे। महात्मा गांधी स्वयं वहां जाकर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। तब उन्होंने आकाशवाणी का सहारा लिया। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचे। ये उनके जीवन का पहला और एकमात्र स्टूडियो दौरा था। यहीं से उन्होंने कुरुक्षेत्र शिविर में रह रहे शरणार्थियों के नाम अपना संदेश प्रसारित किया। उन्होंने लोगों से धैर्य, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। गांधी जी के इसी ऐतिहासिक प्रसारण की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली स्थित जिस स्टूडियो से गांधी जी ने अपना संदेश दिया था, उसे आज बापू स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। बदलते समय के साथ प्रसारण के माध्यम और तकनीक लगातार विकसित हुए हैं, लेकिन लोक सेवा प्रसारण का मूल उद्देश्य आज भी वही है, विश्वसनीय सूचना, जन जागरूकता और समाज के हर वर्ग तक पहुंच। हालांकि आज सूचना के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, फिर भी लोक प्रसारण की इसी विशिष्ट भूमिका और डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता पर एक नजर।
0: आज सूचना तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में समाचार कुछ ही क्षणों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सूचना की इस गति के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है, सत्य और असत्य के बीच अंतर करना। ऐसे समय में लोक सेवा प्रसारण की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल सबसे पहले सूचना देना नहीं, बल्कि प्रामाणिक, संतुलित और जनहित से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। और दूरदर्शन जैसे प्रसारण माध्यम किसी विशेष वर्ग या बाजार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं। उनका मूल उद्देश्य है सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, ताकि नागरिक बेहतर निर्णय ले सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करती है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाई समूहों और जनजातीय समुदायों तक उनकी अपनी भाषा में सूचना पहुंचती है।

0: है। ये केवल संचार नहीं बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। आज जब सोशल मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं और भ्रामक सामग्री तेजी से फैलती है, तब तथ्यों की पुष्टि, संपादकीय उत्तरदायित्व और विश्वसनीय पत्रकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यही वह आधार है जिसने सार्वजनिक प्रसारण को लगभग एक शताब्दी तक लोगों का भरोसेमंद साथी बनाए रखा है। रेडियो प्रसारण की शुरुआत जिस दौर में हुई थी, उस समय सूचना का सबसे प्रभावी माध्यम रेडियो ही था, लेकिन पिछले दो दशकों में संचार की दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आज आकाशवाणी केवल रेडियो सेट तक सीमित नहीं है, न्यूज ऑन AIR ऐप और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले श्रोता अपने मोबाइल फोन पर आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों का सीधा प्रसारण सुन सकते हैं। पॉडकास्ट, ऑन डिमांड ऑडियो, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी समाचार, समसामयिक कार्यक्रम, चर्चाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: 23 जुलाई 1927 को संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत से लेकर आज के डिजिटल युग तक लोक प्रसारण ने समय के साथ स्वयं को लगातार बदला है। 6 रेडियो स्टेशनों से शुरू हुई ये यात्रा आज 470 प्रसारण केंद्रों, 23 भाषाओं, 179 बोलियों, देश की 99.19% आबादी और लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचने वाले विशाल नेटवर्क का रूप ले चुकी है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें केवल इस गौरवशाली विरासत का स्मरण नहीं कराता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि बदलती तकनीक के बीच भी लोक सेवा प्रसारण का मूल उद्देश्य वही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक हैं अलका सिंह।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सर्वकारः प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दंड प्रदानार्थं त्वरित न्यायालयं स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासयत् यत् छात्राणां भविष्य रक्षणं सर्वकारस्य वर्तते शीर्ष प्राथमिकता। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः प्रावोचत् यत् सर्वकारः संसदि नीट सम्बद्ध प्रकरणेषु चर्चायै सर्वथा सन्नद्धः। मनीलायाम् आयोजिते आसियान मंत्रिस्तरीय सम्मेलने भारतम् आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रत्यपादयत्। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि सिंधु जलसंधेः विषये पाकिस्तान देशस्य वक्तव्येषु भारतेन प्रकटिता विप्रतिपत्तिः। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् अतिसीम्नि आतंकवादस्य समाप्तावेव यथावस्थं भवेत् जलसंधिः। अपि च ग्लास्गो कॉमनवेल्थ क्रीडाः अद्य सायं समारप्स्यन्ते। क्रीडा महोत्सवे तावत् 25,100 भारतीय क्रीडिकाः भागं भजिष्यन्ति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दंड प्रदानार्थं केन्द्रीय सर्वकारः त्वरित न्यायालयानां स्थापनं विधास्यति। सः दृढतया न्यगादीत् यत् छात्राणां भविष्यस्य रक्षणं सर्वकारस्य सर्वोच्च प्राथमिकता वर्तते। सामाजिक संजालीय पटले प्रधानमंत्री प्राकटयत् यत् देशस्य यूनां कल्याणात् भविष्याच्च अधिक महत्वपूर्णं किमपि नास्ति। दिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य छात्राणां जायमानस्य विरोध प्रदर्शनस्य मध्ये एतत् वक्तव्यं समागतम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तेन सम्बद्धाधिकारिणः अस्मिन् विषये आवश्यक पदक्षेपान् उत्थापयितुं निर्दिष्टाः। श्रीमोदी दृढतया प्रावोचत् यत् ये यूनां भविष्यं हन्तुं प्रयतन्ते ते सर्वथा नैव त्यक्ष्यन्ते। सः प्रोक्तवान् यत् छात्राणां हितानां रक्षायै उत्थापितेषु पदक्षेपेषु एव एषः निर्णयः गृहीतः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,870। Most Asian stock market indices close in positive zone and global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870 अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: And before we take the top story, important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 364 अंक लुढ़क कर 76,391 पर आ गया। वहीं निफ्टी 127 अंक गिरकर 23,870 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। इससे पहले भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में गिरावट का रुख और तेज हो गया, जिससे सूचकांक लगातार चौथे दिन नीचे आकर बंद हुए हैं।

0: benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index and the Small-Cap 100 Index fell around 1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid geopolitical uncertainties and rising crude oil prices. The bearish sentiment intensified further during the second half of the session, dragging the indices lower for the fourth consecutive day.
1: Sensex mein shamil 30 mein se 19 companiyon mein aaj giravat darj hui. सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों को देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.3%, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% और इंडिको में 1.6% की सुस्ती आई। इसके विपरीत महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.7%, टीसीएस में 1.5% और एटर्नल में 1.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 24 out of 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, Realty dropped 1.8%, Services slipped over 1.6% and Telecommunication fell over 1.3%. In contrast, Auto advanced over 0.5% and Insurance rose 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,585 companies declined, shares of 1,637 companies advanced and shares of 169 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट कारोबार करते हुए 96.57 रुपये पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो इसे केवल अल्पकालिक करेक्शन हम मान सकते हैं या फिर बाजार किसी एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब तमाम भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और तेल की कीमतों में जो उछाल है वो भी देखा जा रहा है?
2: नहीं निखिल जी, मुझे लगता है जो इस हफ्ते हम जो देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है, आज चौथा दिन है जब हम जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं भारतीय बाजार, तो मुझे लगता है जो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो दोबारा से जो है काफ़ी तेज़ हो गया है और उस किसी भी तरह की कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई किसी तरह की कोई पीस का जो या तो बातचीत हो रही हो, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन वो कितनी सार्थक होगी या कितनी सार्थक है वो अभी भी बिल्कुल अनिश्चितता है। और जैसा आपने कहा कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, मतलब वो लगातार बनी हुई है। बीच में हमने देखा युद्ध विराम हुआ लेकिन वो टिका नहीं उसके बाद, और साथ साथ जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, तो इस पूरा जो इस बार फिर हम देख रहे हैं जैसे पहले हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उबाल, $90 के आसपास उसके ऊपर भी कीमतें चली गई थी, अभी आज इस समय भी मुझे लगता है 90 के आसपास है, तो वो हमारे लिए तो कम से कम बहुत खराब खबर है। और चूंकि हम तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो हमारी तेल या गैस की जो ज़रूरतें हैं उनको हम आयात करते हैं, तो इस मुझे लगता है मोटे तौर पर बाजार में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से।
0: सिद्धार्थ, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द नेगेटिव्स इन द मार्केट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव ड्रैग्ड डाउन द मार्केट्स फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन, बट बिटवीन ऑल दिस यू नो आई सी अ रे ऑफ होप। इफ यू लुक एट द ऑटो सेक्टर, द ऑटो स्टॉक्स, एक्चुअली टुडे इज द सेकंड डे दैट द ऑटो स्टॉक्स एंड ऑटो शेयर्स हैव रिजन, सो व्हाट आर द रीजंस दैट इवन अमंग्स दिस डूम एंड ग्लूम ऑटो सेक्टर इज डूइंग सो वेल?
2: Anubha, I would say auto obviously is still in the positive territory, and the most important reason, if you look at the auto sales, the numbers that we got, the last numbers, and if you look across across segments, whether it was four wheelers, two wheelers, three wheelers, or sales of EV, which is really picking up now, and plus also the commercial vehicles. Plus also if you look at the rural side, the track sales of tractors, so we have seen a very positive growth in auto sales across segments, and I think that is the reason which is keeping the auto stocks in green. Plus also if you look at the results, the Q1 results, we've got a couple of auto companies have posted very very good results, very very healthy results, so I think that is primarily the reason. And on a large scale also, I would also say that India's growth story, India's the demand

0: Whether it is rural or urban, I think both on both sides it is intact. So I think it is primarily because of that. And larger market obviously is under pressure because of the rise in oil prices again.
1: So in a way, you can say that investors actually, even when the other sectors are not doing so well, the investors actually believe, they go also with the future performance. They also assess the future performance of certain sectors, which help, those sectors to do well.
0: See, Anubhav, if you look in last year and a half, one of the features which has become and which is something which Indian also kind of reflects on the maturity of Indian markets, that all along, since if you look post Trump, Donald Trump's assumption in as a US president, that the tariff that he unleashed across the globe, not only India, it's a lot of other nations have been victim of Trump's tariffs. So you've seen the domestic institutional investors, though we have seen the exit of foreign institutional investors in a big way in last year and a half, 2 years, we have seen them exiting. So but the domestic institutional investors and also the retail investors, so they showed maturity and they showed their faith in the Indian economy and they continue to invest. And now, since you said that investors always look at at a future and make their investments looking at the future prospects. So if you see the last 1 month from 15 June to 15 July, the positive side is that now the foreign institutional investors are also returning to the Indian markets. So and they've almost bought to the tune of about $6 billion. So and if you look at the net data in terms of their selling and buying, I think that also is around $3 billion. The data that we have till from 15 June to 15 July. So I think as far as Indian economy goes, I think there is nothing negative for us, except yes, we had slight questions on our monsoon. So I think, and but despite sluggish monsoons, the sowing has been good for the Kharif season. So I think, except that, I don't see any challenges in terms of for our domestic. But yes, there are external factors which are having impact on our Indian economy.
2: और सिद्धार्थ, अभी लार्ज कैप की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान आपका स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ले जाओ, तो 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निवेशक अब इस तरह पैसा लगाने से बच रहे, जोखिम उठाने से बच रहे, या दूसरे जो कारण हैं वो इसमें ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे, जैसे बिकवाली की जब हम बात करते हैं?
0: नहीं निखिल, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसे दिनों पे जब जब भी बाजार गिरती है तो ये जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा मतलब एक ये ट्रेंड भी है। आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में जो गिरावट, वो कहीं ना कहीं हमेशा ज्यादा होती है लार्ज कैप्स के बनस्पत। दूसरी बात, पिछले 1-1.5 साल की जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने अपना जो है लार्ज कैप्स की तरफ, या जो उनको लगता है थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा शायद निवेशक उस तरफ ज़्यादा गया है। हालांकि मैं उसको कहीं से भी इस तरह से नहीं मानता हूँ कि बाज़ार में निवेशकों का जो है उनका भरोसा कम हुआ हो या टूटा हो। मुझे लगता है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट है। हाँ, ये इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, चाहे महंगाई पे हो, चाहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी उसकी रफ्तार है, गति है, ग्रोथ, तो उस पे इम्पैक्ट होगा। तो शायद कहीं ना कहीं वही बाजार में हमको इस हफ्ते दिख रही है,
2: लेकिन
0: रिफ्लेक्ट
2: इसमें
0: हो रही
2: एक दूसरी बात ये भी कि पिछले सप्ताह बाजार ने काफी मजबूती दिखाई थी, इस हफ्ते वो मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही। जबकि अगर एक हम रेंज लेकर के चलते हैं तो वैश्विक घटनाओं की रेंज लगभग उसी प्रकार से, लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है।
0: नहीं निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखेंगे कि शायद जो आपने देखा कि लास्ट वीक फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे स्थिति, तो शायद कहीं ना कहीं एक बाजार को भरोसा था कि शायद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो दोबारा जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दिन ना चले और दोबारा दोनों बातचीत शुरू हो और किसी तरह का कोई पीस टॉक्स हो और उस कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रूस हो जाए। और तो शायद चूँकि इस समय आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से लगातार अमेरिका के जो हमले हैं 8-9 दिन हो गए हैं वो बने हुए हैं, और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बल्कि ये वार्निंग दी है कि अब वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जो बिजली संयंत्र हों या चाहे उनके ब्रिजेज हों या पुल हों, तो उन पर भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो जहाज़ हैं जो तेल लेके वहाँ से निकल रहे हैं। उसके साथ

0: साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपने जो ईरान सपोर्टेड हूती रिबल्स हैं उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो
1: अल्टरनेट
0: सप्लाईज का एक रूट बना हुआ था उसको अब उन्होंने उस पर भी उन्होंने जो है रोक लगाई बल्कि दो जहाज़ों पर अटैक भी किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
1: बट सिद्धार्थ इज वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट एंड यू नो इन फैक्ट दैट इज व्हाट इज बीइंग हैज बीन मेंशनड इन द आरबीआईज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बुलेटिन दैट जुलाई बुलेटिन एंड एज यू वर सेइंग दैट यू नो द एफआईआईज आर मेकिंग अ कमबैक हैव मेड अ कमबैक इनटू द इंडियन इकोनॉमी सो दैट ओवरऑल इफ यू डोंट लुक एट इट It's a very good news because as the RBI bulletin says that the healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have helped sustain economic momentum despite challenges arising from fragile geopolitics and supply chain pressures. And as you were mentioning, foreign portfolio investors infused $3.1 billion into equity and debt markets in July up to the 20th of this month, while foreign direct investment remained higher during April and May this year. So overall, like we are discussing that it's the trust of not just FIIs, the domestic investors, as well as FIIs is still intact and, you know, in the Indian story.
0: As Anubha, as you rightly said, it is not only the FIIs, as you also mentioned that figure. In April, May, the FDI inflows have also, it's almost at a record level of about a little over $6 billion. Yeah. And we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion, which is, I think, after 4 years, we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country, and especially at a time when things are so uncertain. And yeah. as the RBI report also mentions about the heightened global economic uncertainty, yes. also supply bottlenecks. But despite all that, they have mentioned in the report the demand, whether it is in the urban areas or in the rural areas. And if you look at the GST data, the digital payments data, so everything is positive. India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth. And the only concern is on the food side.
1: The kharif sowing
0: has been a little delayed because of the onset of monsoon was a little delayed. But there also a big a caveat for us is that we have huge stocks of food grains.
1: Right.
0: So there is nothing to worry, especially the rice, wheat, the essential items. Plus, government has also been kind of procuring the essential vegetables also to ward off any such eventuality. So I do not see in terms of our own domestic parameters, macroeconomic, everything is positive. And if you look at the worst of projections for our current financial year GDP, yeah. India would definitely be the fastest growing economy.
1: Yes.
0: And all the projections are upwards of 6.5%.
1: Exactly.
0: So, and if you look at the first 3 months of export data, so even there we are seeing a 16% growth. So I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges. Right. Yes, inflation could be a concern in terms of obviously oil, high oil prices feeding in. So, but that also till now, the last data we have seen 4.4%. I think that also is within the band.
1: Yes.
0: So,
2: तो सिद्धार्थ, इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है, तो क्या ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल प्लेस देने के मामले में?
0: नहीं, देखिए निखिल, जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि हम बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $700 बिलियन, तो वो ही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपये पर प्रेशर जरूर आया करेंसी पर, चूँकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने इमीडिएटली स्टेप्स लिए। एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ हैं, चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की जो सप्लाई है, उन पे इम्पैक्ट ना हो, तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी स्थिति पे नियंत्रण रखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप दूसरा लिया जो फर्टिलाइज़र को लेके था,
2: जी,
0: ताकि हमारा जो खरीफ की जो सोइंग थी उस पर इम्पैक्ट नहीं हो। एक तो हमारे पास

0: फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे भंडार थे, साथ ही सरकार ने तुरंत जो भी इम्पोर्ट, बहुत हाई प्राइस पे हमने इम्पोर्ट किया लेकिन हमने किया, तो और जो आपका सवाल है कैसे जो जो निवेश आ रहा है, जो FDI FPI और उसके साथ साथ एक और अच्छी हम लोगों ने अभी ने FDI की बात की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की, दोनों में हमें एक पॉजिटिव इन्फ्लो दिख रहा है। उसके साथ साथ एक कल एक और RBI ने आंकड़ा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, चूँकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है
1: जी।
2: आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है।
1: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year-on-year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
2: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि, बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। तो सिद्धार्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है उधर।
0: ना केवल यूरोप, जैसे आप देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले हैं। हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो हमने उसके लिए PLI स्कीम्स जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिंदुस्तान में किसी भी बिज़नेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए, कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
1: जी।
2: एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.4% चढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% ऊपर आ गया, जापान के निक्केई में लगभग 0.5% की तेजी आई, चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया। यूरोप की बात करें तो यूरोप के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक फ्रांस का कैक 40 1.1% से ज्यादा नुकसान में रहा, जर्मनी का डेक्स 0.6% नीचे आ गया और लंदन का फुटसी 100 0.1% नीचे आ गया। सिद्धार्थ, दोनों बाजार की अगर बात करें तो जहां एक और एशियाई बाजार हरे भरे दिखाई दिए, वहीं यूरोपीय बाजार लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक ही दिन में दोनों मतलब रीजन में इतना बड़ा फर्क कैसे है?
0: नहीं देखिए, एशियाई बाजार जहां तक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं जो एशियन बाजार खासकर कॉस्पी वगैरह में, जहाँ की जो कि खासकर दो कंपनियां जो चिप मेकर्स हैं, तो उसकी वजह से आपको वहां पे जो है इतना एक बॉयंसी दिख रही है। साथ साथ जो यूरोपियन मार्केट्स की बात है, जहाँ तक आज वो नेगेटिव में है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निराशा है वो।
1: सिंस यू आर मेंशनिंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आई विल हैव टू यू नो, आई विल जस्ट let our listeners know that the European Central Bank has, you know, come out with this decision, and the ECB left interest rates unchanged at 2.25% today.

0: की नज़र होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
1: Siddharth, I'll come back to the prices of the gold and silver prices, you know, especially gold prices. We see that they have fallen a little bit, you know.
0: And Anubha, I would also add one more thing here.
1: Sure.
0: To the Nikhil ke jo sawal tha, Q1 results hamare achhe aaye hain. अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके बावजूद हम बाज़ार में गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे बड़ा निवेशकों के मन में या बाज़ार में जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और वो उसका भविष्य में क्या होगा।
1: जी, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कॉमेंट फ्रॉम यू ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, बिकॉज आर वी सीइंग द फॉलिंग इन प्राइस बिकॉज ऑफ द हाई US बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड्स एंड बिकॉज ऑफ अ फर्मर डॉलर?
0: एक्चुअली यू हैव आंसर्ड your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
1: Yeah.
0: Each time there is uncertainty, gold price

0: on treasury yields and because of a firmer dollar?
1: Actually, you've answered your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
0: Yeah.
1: Each time there is uncertainty, gold prices used to go up. But this time, because it is the US dollar and the US treasury yields and the fear of inflation.
0: Yeah.
1: So that is driving people away from gold.
2: सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: आप दोनों को भी धन्यवाद.
0: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,870. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन पॉजिटिव जोन. And global crude oil prices rise around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ती

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण

वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और DGA से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ

क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और

0: नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: நேரம் 8:15, ஆகாஷ்வாணி சென்னை.

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: At the level of the Prime Minister,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों

0: की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की

0: बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगांव में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य

0: आचार एक बार फिर सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित क्या है।
3: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट है और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से। जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
2: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रख कर देखें तो देश में इसकी जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो, जो पहले बिजली से नहीं चलते थे, अब अगर बिजली से चलने लगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे आम एग्जाम्पल आपके सामने है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से ईवी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ईवी से अगर वो चलेंगी तो एमिशन नहीं होगा या कम होगा। और अगर वो बिजली जिससे ईवी चार्ज हो रही है वो हरित है, ग्रीन है, जो सोलर विंड या हाइड्रो से बनी है, तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि आपने डीजल और पेट्रोल के एमिशन भी हटा दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन हुई। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हो सीधे सीधे, जिनको हम लिटरेचर में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, जिनको मुश्किल है जिनके एमिशन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कम करना। उनमें ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है। तो हाइड्रोजन वहां जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल, जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
2: जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर के बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए, और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें?

0: कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं।
1: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली
0: जी
1: थी। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 गीगावाट, 180,000 मेगावाट से ऊपर चले गए हैं। और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं, उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो।
0: जी
1: नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा, तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को खत्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें खत्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको,
0: वो हम खुद कर
1: पवन
0: सकते
1: ऊर्जा
0: हैं।
1: को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं, वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, जो मैंने बताया,
0: जी
1: जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके के यही देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है। और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं,
0: जी
1: लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
0: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों का साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोडमैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
1: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री, जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करनी थी, और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है। तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीजों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात ये कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, ये सब बहुत बड़े काम है। इसमें अंतरदेशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
0: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है, और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े।
1: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है, और ये भारत की ही पहल पर बना, और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं, और

0: जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: रेहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसे कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
0: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है, और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014-15 के बाद जो हमारा ना, वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखिए कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है, किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं, और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफटॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है, लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं, ये जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
1: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल, पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये जो उपकरण है, इन्हें घरेलू स्तर पे अगर बढ़ावा मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
0: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, यानी आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन जो आपने भी बताया, PLI और सब स्कीम से हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाया जाए, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर वो उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, MNRE की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसमें छोटे स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज को भी समर्थन, न कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है, और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा, और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: रेहन जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
0: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है, क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए, लेकिन कुछ जो कार है, जैसे गाड़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन के इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
1: रेहन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ

0: खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अब से कुछ ही देर में ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाई के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protests for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding

0: बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। 23वें राष्ट्रमंडल खेल अब से थोड़ी देर में ग्लासगो में शुरू होंगे। और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राप्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत ने 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों को निराधार और अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुपक्षीय मंच का दुरुपयोग, झूठ फैलाने, राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार करने और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के अपने इतिहास से ध्यान भटकाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख अटल है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले सहित सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार प्रायोजित किए जाने के जवाब में जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा गया है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक रूप से प्रायोजित दुष्प्रचार के निरंतर प्रसार की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य और उसके आसपास निर्बाध नौवहन तथा ऊर्जा और वाणिज्य के लिए सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान समर्थित और यमन स्थित सशस्त्र समूह हूती समुद्री जहाजों पर और हमले करता है तो अमरीका ईरान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि एक साल पहले हूती समूह द्वारा समुद्री मार्गों को निशाना बनाकर वैश्विक व्यापार को बाधित करने के बाद अमेरिका ने उसके खिलाफ बड़ा सैन्य हमला किया था। उन्होंने कहा कि समूह ने अपना आक्रामक रुख फिर से अपना लिया है और कल शाम 2 सऊदी अरब के जहाजों पर गोलीबारी की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने आज रिकॉर्ड 1.15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के रक्षा नीति विधेयक को पारित कर दिया, जिसमें अमेरिका और इसराइल के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने की योजना शामिल है। वित्त वर्ष 2027 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के पक्ष में 216 और विरोध में 212 मत पड़े। इस तरह मामूली अंतर से ये विधेयक पारित किया गया। 6 डेमोक्रेट सदस्यों ने पक्ष में और 7 रिपब्लिकन सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। अब ये विधेयक आगे की मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कैटरोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में

0: कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसर रचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यूरोपीय कंपनियां विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रुचि दिखा रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत यूरोप के मजबूत आर्थिक संबंध, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और बढ़ावा दे सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
1: घाना स्थित भारतीय उच्चायोग ने मालवाहक जहाज एमवी रफान मून के साथ के 9 भारतीय चालक दल के सदस्यों की सफलतापूर्वक स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है, जो कुछ समय से घाना में फंसे हुए थे। उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि घाना समुद्री प्राधिकरण, घाना बंदरगाह प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक संघ के सहयोग से ये स्वदेश वापसी हुई। उच्चायोग ने कहा कि ये सफल वापसी विदेशी धरती और खुले समुद्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान मालदीव और युगांडा के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांडविया ने कहा कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था। उन्होंने भारत के विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना, खेल विज्ञान में बढ़ती विशेषज्ञता, एथलीट विकास और उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण प्रणाली का उल्लेख किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अब से थोड़ी देर में ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। भारत ने आसियान मंच पर सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा, सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक जल संधि स्थगित रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। 23वें राष्ट्रमंडल खेल अब से थोड़ी देर में ग्लासगो में शुरू होंगे। और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Abhineet Shukla with The World News. The headlines. India stresses international waterways must remain safe and unblocked, calls for dialogue and diplomacy to end West Asia conflict. New Delhi rejects Islamabad's remarks on Indus Waters Treaty at ASEAN Forum, says treaty to stay in abeyance until cross-border terrorism ends. President Draupadi Murmu holds delegation-level talks with her Romanian counterpart, Nicosia.

0: The time now is 11 p.m. and coming up is the news in Hindi.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी
2: जी विषय पर अपनी बात
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा

0: के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

0: के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. த நியூஸ் ரெட் பாய் அபினீத் சுக்லா. யூனியன் மினிஸ்டர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் ஹேஸ் அப்பீல்ட் டு த ப்ரொடெஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி என்இஇடி பேப்பர் லீக் இஷ்யூ டு கம் ஃபார் டாக்ஸ், சேயிங் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆன் ஆல் இஷ்யூஸ். டாக்கிங் டு மீடியா, த மினிஸ்டர் செட் that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं.
0: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग. द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस. वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इश्यू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न. द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग.
1: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। Benchmark domestic indices declined for fourth straight session. Sensex falls over 350 points. Nifty settles at 23,870. Most Asian stock market indices close in positive zone. And global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870

अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: And before we take the top story, important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 364 अंक लुढ़क कर 76,391 पर आ गया। वहीं निफ्टी 127 अंक गिरकर 30,870 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। इससे पहले भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में गिरावट का रुख और तेज हो गया, जिससे सूचकांक लगातार चौथे दिन नीचे आकर बंद हुए हैं।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index and the Small-Cap 100 Index fell around 1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid geopolitical uncertainties and rising crude oil prices. The bearish sentiment intensified further during the second half of the session, dragging the indices lower for the fourth consecutive day.
1: Sensex में शामिल 30 में से 19 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों को देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.3%, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% और इंडिको में 1.6% की सुस्ती आई। इसके विपरीत महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.7%, टीसीएस में 1.5% और एटर्नल में 1.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 24 आउट ऑफ 26 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। अमंग द टॉप लैगर्ड्स रियलिटी ड्रॉप्ड 1.8%, services slipped over 1.6% and telecommunication fell over 1.3%. In contrast, auto advanced over 0.5% and insurance rose 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,585 companies declined, shares of 1,637 companies advanced and shares of 169 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट कारोबार करते हुए 96.57 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो इसे केवल अल्पकालिक करेक्शन हम मान सकते हैं या फिर बाजार किसी एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब तमाम भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है और तेल की कीमतों में जो उछाल है वो भी देखा जा रहा है?
2: नहीं निखिल जी, मुझे लगता है जो इस हफ्ते हम जो देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है, आज चौथा दिन है जब हम जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं भारतीय बाजार, तो मुझे लगता है जो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें जो दिखाई दे रहा है, वो सीधे सीधे जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो दोबारा से जो है काफ़ी तेज़ हो गया है और उस किसी भी तरह की कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई किसी तरह की कोई पीस का जो या तो बातचीत हो रही हो, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन वो कितनी सार्थक होगी या कितनी सार्थक है वो अभी भी बिल्कुल अनिश्चितता है। और जैसा आपने कहा कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, मतलब वो लगातार बनी हुई है। बीच में हमने देखा युद्ध विराम हुआ लेकिन वो टिका नहीं उसके बाद, और साथ साथ जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, तो इस साथ जो इस बार फिर हम देख रहे हैं जैसे पहले हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उबाल, $90 के आसपास, उसके ऊपर भी कीमतें चली गई थी, अभी आज इस समय भी मुझे लगता है 90 के आसपास है, तो वो हमारे लिए तो कम से कम बहुत खराब खबर है। और चूंकि हम तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो हमारी तेल या गैस की जो ज़रूरतें हैं उनको हम आयात करते हैं,

0: इनका कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, चाहे महंगाई पे हो, चाहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी उसकी रफ्तार है, गति है, ग्रोथ, तो उस पे इम्पैक्ट होगा। तो शायद कहीं ना कहीं वही बाजार में हमको इस हफ्ते दिख रही है।
1: लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये भी कि पिछले सप्ताह बाजार ने काफी मजबूती दिखाई, तो इस हफ्ते वो मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही। जबकि अगर एक हम रेंज लेकर के चलते हैं तो वैश्विक घटनाओं की रेंज लगभग उसी प्रकार से, लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है।
0: नहीं निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखेंगे कि शायद जो आपने देखा कि लास्ट वीक फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे स्थिति, तो शायद कहीं ना कहीं एक बाजार को भरोसा था कि शायद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो दोबारा जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दिन ना चले और दोबारा दोनों बातचीत जो है बातचीत शुरू हो और किसी तरह का कोई पीस टॉक्स हो और उस कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रूस हो जाए। और तो शायद क्योंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से लगातार अमेरिका के जो हमले हैं 8-9 दिन हो गए हैं वो बने हुए हैं, और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बल्कि ये वार्निंग दी है कि अब वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जो बिजली संयंत्र हो या चाहे उनके ब्रिजेज हों या पुल हों, तो उन पे भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज हैं जो तेल लेके वहां से निकल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने जो ईरान सपोर्टेड हूती रिबेल्स हैं, उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो अल्टरनेट सप्लाईज का एक रूट बना हुआ था, उसको अब उन्होंने उस पे भी उन्होंने जो है रोक लगाई, बल्कि दो जहाजों पे अटैक भी किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
2: बट सिद्धार्थ, एज यू वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल intact, and you know, in fact, that is what is being has been mentioned in the RBI's state of the economy bulletin, that July bulletin. And as you were saying, that you know, the FIIs are making a comeback, have made a comeback into the Indian economy. So that overall, if you know, you look at it, it's a very good news, because as the RBI bulletin says, that the healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have helped sustain economic momentum despite challenges arising from fragile geopolitics and supply chain pressures. And as you were mentioning, foreign portfolio investors infused $3.1 billion into equity and debt markets in July up to the 20th of this month, while foreign direct investment remained higher during April and May this year. So overall, like we are discussing, that it's the trust of not just FIIs, the domestic investors as well as FIIs is still intact, and you know, in the Indian story.
0: As Anubha, as you rightly said, it is not only the FIIs, as you also mentioned that figure in April, May, the FDI inflows have also, it's almost at a record level of about a little over $6 billion. And we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion, which is, I think, after 4 years we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country, and especially at a time when things are so uncertain. And as the RBI report also mentions about the heightened global economic uncertainty, also supply bottlenecks. But despite all that, if you look at, they have mentioned in the report the demand, as which whether it is in the urban areas or in the rural areas, and if you look at the GST data, the digital payments data, so everything is positive. The India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth, and the only concern is on the food side. The kharif sowing has been a little delayed because of the monsoon, onset of monsoon was a little delayed, but there also a big a caveat for us is that we have huge stocks of food grains,
2: right?
0: So there is nothing to worry, especially the rice, wheat, the essential items, plus government has also been kind of procuring the essential vegetables also to, you know, ward off any such eventuality. So I do not see in terms of our own domestic parameters, macroeconomic, everything is positive. And if you look at the worst of projections for our current financial year GDP, India would definitely be the fastest growing economy, and all the projections are upwards of 6.5%. So, and if you look at even the first 3 months of export data, so even there we are seeing a 16% growth. So I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges. Right. Yes,

0: inflation could be a concern in terms of obviously oil, high oil prices feeding in. So, but that also till now, the last data we have seen 4.4%. I think that also is within the band.
1: Yes.
0: So,
2: सिद्धार्थ, इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है, तो क्या ये कि ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल प्लेस देने के मामले में?
0: नहीं, देखिए निखिल, जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि हम बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन 700 बिलियन डॉलर, तो वो ही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपये पर प्रेशर जरूर आया करेंसी पर, चूंकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने उत्तर इमीडिएटली स्टेप्स लिए। एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ हैं, चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की जो सप्लाई है, उन पे इम्पैक्ट ना हो, तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी स्थिति पे नियंत्रण रखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप दूसरा लिया जो फर्टिलाइजर को लेके था, ताकि हमारा जो खरीफ की जो सोइंग थी उस पर इम्पैक्ट नहीं हो। एक तो हमारे पास फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे भंडार थे, साथ ही सरकार ने तुरंत जो भी इम्पोर्ट, बहुत हाई प्राइस पे हमने इम्पोर्ट किया लेकिन हमने किया, तो और जो आपका सवाल है कैसे जो जो निवेश आ रहा है, जो FDI FPI और उसके साथ साथ एक और अच्छी, हम लोगों ने अभी ने FDI की बात की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की, दोनों में हमें एक पॉजिटिव इन्फ्लो दिख रहा है। उसके साथ साथ एक कल एक और RBI ने आंकड़ा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी, उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है
1: जी।
2: आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है।
1: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year-on-year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
2: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि, बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। तो सिद्धार्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है उधर।
0: ना केवल यूरोप, जैसे आप देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले हैं। हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो हमने उसके लिए PLI स्कीम जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में, मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए, कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
2: एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.4% चढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3

0: 3% ऊपर आ गया। जापान के निक्केई में लगभग 0.5% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया।
1: Let's move on to the commodities. Global crude oil prices surged today. Brent crude was trading almost 4.9% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 4.4% up at $90.70 per barrel when reports last came in. Let's also have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading 1.2% down at 1,44,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% down at 2,22,790 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% गिरकर 1,43,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी करीब 2% नीचे आकर 2,22,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, कारोबारी सप्ताह की बात करें तो कल अंतिम दिन होगा और आज चौथा दिन था जब लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले भी सुस्ती देखी गई। अब क्या लगता है कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर ऑयल्स के दाम पर या फिर जो दुनिया भर में तमाम अनिश्चित राजनीतिक की अनिश्चित घटनाएं हो रही हैं उन पर, या फिर और भी कोई भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं?
2: नहीं, मुझे लगता है निखिल, सीधी सी बात है, जो अमेरिका और ईरान का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, क्योंकि उसी का सीधा इम्पैक्ट है जो आपने बोला क्रूड ऑयल प्राइजेस पे। तो मुझे लगता है जो एक बड़ा चीज जो निवेशकों को की नज़र होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
1: सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, यू नो, स्पेशली गोल्ड प्राइसेस, वी सी दैट दे हैव फॉलन लिटिल बिट, यू नो,
2: इन। एंड अनुभव, आई वुड आल्सो ऐड वन मोर थिंग हियर टू द निखिल के जो सवाल था, Q1 रिजल्ट्स हमारे अच्छे आए हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके बावजूद हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे बड़ा निवेशकों के मन में या बाजार में जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और वो उसका भविष्य में क्या होगा।
1: जी, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कमेंट फ्रॉम यू ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, बिकॉज़ आर वी सीइंग द फॉलिंग इन प्राइस बिकॉज़ ऑफ द हाई यूएस बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड्स एंड बिकॉज़ ऑफ अ फर्मर डॉलर?
2: Very, actually you've answered your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time. Yeah. Each time there is uncertainty, gold prices used to go up, but this time because it is the US dollar and the US treasury yields and the fear of inflation, yeah, so that is driving people away from gold.
0: सिद्धार्थ, जिस कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दोनों को भी धन्यवाद।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,870। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन पॉजिटिव जोन and global crude oil prices rise around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय

0: அடிச்ச போது கூச்சல் போட்டு அழுத்ததென்ன வள்ளியம்மா, கைய கொடுத்த போது இழுத்ததென்ன கள்ளியம்மா.
1: அந்த இடத்தில் நீ இருந்து உயிரை வாங்கி
2: ஒலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைகானம் நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
3: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है. उन्होंने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा. श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे.
4: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं. सरकार के दरवाजे खुले हैं. आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं. प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी. आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे. उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है.

संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसिनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोस डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हित

0: समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे सस्ती, पारदर्शी और चालक हितेशी सेवा बताया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
1: We are always ready for dialogue. The doors of the government are always open and you are welcome to engage in discussions at any time as per your convenience. We are prepared to discuss every issue including those related to the movement as well as any other matters of concern. The Union Health Minister and Senior Leader, Shri J.P. Nadda, will hold discussions with you and I will also be present during the meeting.
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: Earlier, Prime Minister Narendra Modi announced that the center will set up fast track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following the opposition protest over various issues, including the

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை அண்ணாமலை, செம்பருத்தி ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: வண்டாட்டமா மயங்கட்டுமா அதில் மிதக்கட்டுமா. 64 வாங்கின காரு 27.
1: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஊட்டி வரை உறவு, நெஞ்சிருக்கும் வரை, செல்வமகள் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं. प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है. उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे. उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे. इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी. श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है. उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की. श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है. सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है. शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है. नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे. टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है. केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे. सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है.

इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक

0: பண்பறையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों

विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பாட்டு மற்றும் டாக்டர் ஸ்ரீராம் பரசுராம் அவர்களின் வயலினிசை கேட்டோம். பண்பர்கள் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने श्री वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला

0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके

0: अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित आसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिका की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने बताया कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन संबंधित घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और उसका इलाज जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपशिष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया है। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, governance's foremost responsibility was to

0: ensure that students should not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents.
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anugraha Baliga at the